पांड जमी है पंड निमी है पंड मंगन वे आहो पंडो हो वै दोस्ती पंडो चल रहो पंड मोआ पंड पालिए पंडोआ बंदा सुख मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो पंड पुर पंड बाज नाखो नानक पंड बाज एको सच्चा सोए जित

0: और सब को आखे अपना जिस नाई सोच कड़ी है किताब वो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाई ऐत जगता कायत कर भंडी है मंदा किसे ना किए पर अखर एह बुझिए मूर्खे ना ना लुजिए मूर्खे ना ना लुजिए
1: गुरसिखा मना वदाइया जन मेरा

0: सेवा करे तक पाए मान, नानक जिस लगा तिस मिले, लगा सो परवान महला दूजा।
1: जो जिह सुगै मौका के आवाओ, बीजै बिख मंगै अमृत वेखो, इउ नियो महला दूजा।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद चक कर चिहन यर भरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत किह अचल मूरत अन पाओ प्रकाश अमित तोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे सहण गण जैन त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वय सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम बरनत सुमत गुर अमरदास परसिय पोहम पातक विनाशह गुर अमरदास परसिय सिद्ध साधक आसासह गुर अमरदास परसिय ध्यान लहिय पौ मुक्कहे गौर अमरदास परसिय अपौ लभै गौ चुकहे एक बिन दुगण जो तौ रह जा सुमंत्र मान वह लह जाल पापदारथ इतड़े गौर अमरदास मिलह सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला ऐ जब लग जोबन सास है तब लग एह तन खेद तब लग एह तन देह बिन गुण काम न आवई टह टेरी तन खे मेरे मन लैला कर जाहे गुरमुख नाम सलाहिया हौ मैं निवरी पाहे सुन सुन गंडन गंडिया लिख पढ़ बुझ पार तृष्णा एन से अगली हौ मैं रोग विकार ओह वे परवाह अतोलवा गुरमत की मत सार लख स्याण पजे करी लख स्यो प्रीत मिलाप बिन संगत साधना त्रापिया बिन नावे दुख संताप हर जप जी अरे छुट्टी गुरमुख चीन आप तन मन गुर पह विचया मन दिया सिर नाल त्रिभवन खोज टंडोलिया गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ नाल बहुत जन्म बिछड़े थे माधव एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो
चिर पायो दर्शन देखे लिख कतहि न छुटिए खिन खिन भूलनहार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुकहु टल गुर सेविय अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अर सोह कुरसो चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठियां सोइए सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाह दशाह हो जिस पास बैठियां सोइए सबना दावे साहो सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी बिलावल महला तीजा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहित सियो जित होण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया त्रिग शरीर कुटुंब सहित सियो जित होण खसम ना पाया पौड़ी छुड़की फिर हाथ न आवे अहला जन्म गवाया दूज
ਦੂਜਾ ਪਾਉ ਨਾ ਦੇਈ ਲੇਵ ਲਾਗਣ ਜਿਨੇ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਵਿਸਾਰੇ।

तिन के तै दुख निवार रहा तू दयाल दया पत दाता किया एह जंत विचार मुकत बंद सब तुझते होए ऐसा आख बखान गुरमुख हो वैसो मुकत कहिए मन मुख बंद विचार सो जन मुकत जिस एक लिव लागे सदा रहे हर नाले तेन की गहन गत कही न जाए सच्चे आप सवार परम पुलाने से मन मुख कहिए ना उरवार ना पार जिसनो नदर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले हर जन माया माहे निस्तारे

सकत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

आरती अमृत बारंग प्रंग अनेक न जपन करतबा सब जान ला सब किस तेरा वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद बधाई तुद घर मार महता तेज अपना आप जन सबकला भरपूर दिस जतकता नानक दासन दास उदया गए बिनवता।

रंग परंग अनेक ना जापन करतबा, जी अंदर जियो सब कुछ जाने ला, सब कुछ तेरे वास तेरा कर पला, तेरे कर नंद वधाई तुद कर, माण महता ते जे अपना आप जर।

रंग प्रंग अनेक न जापन करतबा, जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरा वस तेरा कर भला, तेरा कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज आपना आप जर, सर्व कला भरपूर दिस जत कता, नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता।

दिवस रात दई दया खेल सगल जगत चंगियां बुरियां वाचा धर्म दूर करमी।

हर का भजन, कौन कौन न तारे खग तन वीर तन मृग तन बराह तन साधु संग उधारी रहा।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमारी करो हाथ दैर अच्छा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमारे दुष्ट सब तुम कावह, आप हाथ दे मोहे बचावह। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब करतारा। मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोरे भजन की रह प्यासा। तुम है शाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चौने चौने सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जू करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, कट कट के पट पट की जानै। जब उदकरख करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनादि असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पीव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड कश भेद न जानत। महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पुज खान बहुरे रच दीनी। कहूं फूल राजा हुआ बैठा, कहूं सिमट भयो संकर इकैठा। सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आदि जुगाद इस रूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगर हो।
दुष्ट जिते उठवत युत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित होय मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्यै है, ताकि काल निकट नह है। रक्षा होय ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टर तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताकि ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध करमो सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास ते ताहे उबारा। जिन नार नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दो।

सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

0: Infatti,
1: बोल जी वाहेगुरु, एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर है, घर नौ निध आवै ताए, सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय। दसां

जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। विछड़िया मिले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दृढ़ाईदा कट्टी हौ मैं रोग। नानक सतगुर तिना मिलाया जिना तुरी पया संजोग। पूरन परम जोत सतगुर सत रूप।

सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास बैठिया सोही सब ना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहा दैसाहु जिस पास

हम अवगुण परे एक गुण नाही। अमृत शाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले। सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनियों गुर संगत। तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राख हो सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की। गुर राम दास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेवी अहनस सहज, दर्शन परस है गुरु कै जन्म मरण दुख। ओ सिफत खसम दीन ओर अरसहं कुरसहं, तुदरिठे सच्चे पात सहामल जन्म जन्म दी। सजन सच्चा पात साहु सिर साहांद, जिस पास बैठिया सोही सबनांदा। सजन सच्चा पात साहु सिर साहांद, जिस पास बैठिया सोही सबनांद। सतनाम

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया खिले सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म है दू, करमी आपो अपनी के नेड़े के दू, जिनी नाम ते आया गए मस

विस्माद भेद, विस्माद रूप, विस्माद रंग, विस्माद नांगे फिरे जन, विस्माद पौन, विस्माद पानी, विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती, विस्माद खाने, विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग, विस्माद विजोग, विस्माद पुख, विस्माद भोग, विस्माद सिफत, विस्माद सलाहा, विस्माद उजड़, विस्माद राहा।

मुसलमान सिफ सरियत पड़ पड़ करे विचार बंदे से जे पवे बिच बंदे वेखण को दीदार हिंदू साला ही साला हरन दर्शन रूप अपार तीर्थ ना वैरचा पूजा अग्रवास बैकार जोगी सुन त्यावन।

0: सोप करे संसार चो राजा रा तै कुड़ियारा खारा बावे कार
1: एक होंदा खाय चले था उतना बिकाई कार जल थल जिया पुरिया लो आकार आका ओए जी आखा सुतुह जाना तिना भी तेरी सार नानक भक्ता पुख सलाहन सतनाम आधार सदा

0: पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेते आरे जा पड़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हो मैं चकना चाक महला पहला
1: जग जग पड़िया ते ता कड़िया बहु तीर्थ पविया ते तो लविया बहु पेखिया दे दुख दिया सो विजिया अपना किया अन न खाया साध गवाया बहुत पाया दूजा पाया बस्तर ना पैरे अंश कह रे बस्तर ना पैरे अंश कह रे मोड़ बिगुता क्यों जागे गुर बिन सूता
0: पग पताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्खंदे पत गवाई बिन नावे खिस्ताए ना पाई रहे बेबाणी मणि मसाणी अंदना जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए
2: नानक।

0: निरंकार आकार अचल पूर्ण अविनाशी हरखवंत अनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासे जाको हो है कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहते रहियो।
1: किया खेल बड मेल तमाशा वाहे गुरु तेरी सब रचना तू जल थल गगन पयाल पूर रहया अमृत ते मीठे जाके बचना माने ब्रह्मादिक रुद्रादिक काल का काल निरंजन जचना गुर प्रसाद पाइए परमारथ सत संगत से ती मन खचना किया खेल बड मेल तमाशा वाह गुरु तेरी सब रचना।

दास सो आस जगत रे गुरु की पारस पेट परस करयो रामदास गुरु हर सत कियो।

0: हाथ धरियो।
1: जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, ताते अंगद भयो तत स्यों तत मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सत गुर थिर कियो, अमर दास अमरत शत्र गुर राम दियो। गुर राम दास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बैण, मूरत पंच प्रमाण पुरख गुर अर्जुन पिखो नैण।
2: श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, गुर कहा मान निज निदान सच जान, मंत्र ए है निसबसर होए कल्याण, रहे परम गत जियो। काम क्रोध लोभ मोह जन जन स्यों छाड़ तो, होमे का फंद काट साध संग रत जियो। दे गे हो त्रेस ने हो चित विलास जगत एहो, चरण कमल सदा से उदृढ़ता कर मत जियो। नाम सार ही ए तार तज विकार मन गे अंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
3: नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख,

मास सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामंदी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठियां सोही है, सवना दा वेसाहु। सज्जन

लापट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। बेखिया मैं के नहीं त्रिपत न पाई, ज्यों पावक ईदन नहीं तरापे, बेन हार कहाँ अगाई। रहाओ देन देन करत भोजन बहु बिंजन, ताकि मिटे न भूखा। उद्यम करे सुआन की न्याई, चारे कुंटा कोखा। काम बंत कामी बहु नारी, पार गृह जोह ना चुके। देन प्रत करे करे पश्चतापे, सोग लोभ मह सूके। हर हर नाम अपार अमूल, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। हर हर नाम अपार अमूल, अमृत एक निदाना। सुख सहज आनंद संतन के, नानक गुर ते जाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पांजवा, वड़े वड़े राजन अर भूमन, ताकि त्रिशन ना बूझी। लापट रहे माया रंग माते, लोचन कछु ना।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथमा भगवती सिमरकै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास। राम दास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद ना सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइया जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां। चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां। जिना नाम जपिया वंड छकिया। देग चलाई तेग वाही देख के अंडठ कीता। तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के।